0: Patagonia
1: Extreme Energy Drink.
2: निकट मा दिदी बहिनी, विकट मा दिदी बहिनी, यो हो रेडियो दिदी बहिनी।

0: उद्योग होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्सकै अभिकर्ता बनाऊ।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड